मैनू जानी ना तिला बौकर बन के हूं जदेऊं जे आकड़ छड़ी ना अपनी तैनू नक्शे तो पूंज देऊं जे आकड़ छड़ी ना अपनी तैनू नक्शे तो पूंज देऊं मैं पक्षियां दी झल नहीं।

असां कदे जोश विच आके अपना होश नहीं खोया, असी अग अंदर बालदे आ कदे आक्रोश नहीं खोया। हुण होणा जो तू वेखी मैं ता घमसान दा।

ऐसे ही तो जरूरी है मीठे वचन, जुबां से जो दिल ही दुखाता रहे, जुबां से जो दिल ही दुखाता रहे, उसका जीवन तो है एक शमशान का। जुबां से जो दिल ही दुखाता रहे, उसका जीवन तो है

ये जीवन भला है ये किस काम का, जिंदगी का सफर ये सुहाना बने, छोड़ दे तू अगर सारे शिकवे गिले, जिंदगी का सफर ये सुहाना बने।

सदा उसकी ही मौज में खुश रहे, जो सदा उसकी ही मौज में दास सच्चा, वही तो है भगवान का। खुश रहे जो सदा उसकी ही मौज में दास सच्चा, वही तो है भगवान का। तू सहारा अगर ना किसी का बना, तो ये जीवन तेरा बस।

अपने खातर दुनिया मर दी मिट दी आईए, किसे दी खातर दसो कीने जान गवाईए, किसे दी खातर दसो कीने जान गवाईए। चरखड़िया ते चढ़ना बंद बंद कटवाना बड़ा ही औखा है, सरबंस बार के धर्म निभाना बड़ा ही औखा है। मखमल छड़ के कंडे आते सोना बड़ा ही औखा है,

0: महापावर रेडियो।
1: रेडियो दे प्यारे श्रोतियो, प्रोग्राम कवि दरबार दे विच हरवंश सिंह वालों आदाब नमस्कार सत श्री अकाल कुदरत खैर करी। प्यारे श्रोतियो, अज 27 दिसंबर 2020 दिन एतवार है, शाम दे 5 बजदे हन ते असी अपना हफ्तावारी प्रोग्राम कवि दरबार लैके हाजिर हां। इस वार कुछ तकनीकी मजबूरिया कारण जिहड़ा आ बहुत काली दे विच इह प्रोग्राम तैयार कर रहे हां ते इस दे विच बहुत सारियां खामियां होणगियां। इन्हां खामियां नूं सारियां ने नज़रअंदाज करदे होए इस कवि दरबार दा आनंद माणन दी कोशिश करनी ते सब तों पहलां इस कवि दरबार दा आगाज करन लई मैं पटियाला तों शायर सरदूल सिंह भल्ला जी नूं सद्दा देंगा। ओह दसवें पातशाह श्री गुरु गोबिंद सिंह जी दे छोटे लालां बारे, छोटे साहिबजादियां बारे अपनी एक कविता जिहड़ी लैके हाजिर हो रहे ने सरदूल सिंह भल्ला जी। दुआबा रेडियो दे मंच ते तुहाडा निघा स्वागत है।
2: मैं एस एस भल्ला पटियाला, अज छोटे साहिबजादियां नूं ठंडे बुरज विच माता गुजर जी समेत कैद किया गया सी। कहरां दी ठंड पै रही सी पर ओ बच्चे माता भुखे पाने बिना किसे कपड़े दी ओट उस ठंडे बुरज दे विच बैठे पे सन, जिन्हां दी एक कविता में लिखी है, ओ किरपा करके सुनना मैं बच्चे दादी नूं की कहंदे हन। एक कविता मेरी पाशा भाग ने अवल कविता करके सन्मानित किया सी। श्रवण करो जी। साब जादे अखण दा दिए नी

हादा नारा मारदा, हादा नारा मारदा नवाब शेर खान जी हादा नारा मारदा। हाथ जोड़ खड़ा अर्ज गुजारदा, नैनी अत्थर उत्ते मनो ताहा मारदा, मजबूर है सिपाही सरकार दा, कहंदा एहो जही सजा दसे ना कुरान जी हादा नारा मारदा, हादा नारा मारदा नवाब शेर खान जी हादा नारा मारदा। सुबा सरहंद दे आगे खड़ गया, सुचे मुसलमान नू गुस्सा चढ़ गया, सच कहन उते सूरमा सी अड़ गया, कहंदा शर शर झूठा थोड़ा फुरमान जी हादा नारा मारदा, हादा नारा मारदा नवाब शेर खान जी हादा नारा मारदा। कहंदा बच्चियां तो

का सफर, आते जाते हुए मुस्कुराना, हंसते गाते दिन बिताना, हाँ जिंदगी एक

साथ सफर का रूठे ना, रूठे अगर तुम ना लेना। साथ सफर का रूठे ना, रूठे अगर तुम ना लेना। मौका हरगिज़ ना तू गवाना, हंसते गाते दिन बिताना। हाँ जिंदगी ये कहेगा तू गाना, हंसते गाते दिन बिताना।

जिस दिन चुप तू हो जाएगा, इस बात को भूल न जाना, हंसते गाते दिन बिताना। हाँ, जिंदगी ये

मान साडा हर मैदान फते एह अभिमान साडा हक सच दी जंग भी जित लैनी जित लैनी हां जित लैनी हक सच दी।

घट बोलन दी आदत पाओ न बड़बड़ करना हुंदा चंगा। उलझलूल बोलन नालों चुपताएं अपनाउणा चंगा। बड्डियां दा

ऐसे ही तो जरूरी है मीठे वचन, जुबां से जो दिल ही दुखाता रहे, जुबां से जो दिल ही दुखाता रहे।

खुश रहे जो सदा उसकी ही मौज में, दास सच्चा वही तो है भगवान का। खुश रहे जो सदा उसकी ही मौज में।

0: स्कोप है, टीचिंग
1: हाँ
0: है,
1: जी
0: ओदे विच बहुत कंपटीशन है, क्योंकि बहुत ज्यादा मात्रा विच लोग जेड़े ने टीचिंग जेड़ा प्रोफेशन है ओदे विच आना चाहुंदे ने।
1: ठीक है।
0: कंपैरेटिवली एदे विच बहुत घट है, क्योंकि ज्यादा बच्चे सोचते नहीं है कि इन्ना जल्दी असी इंप्लॉयबल हो जाएंगे, या फिर उन्हां नूं अवेयरनेस भी घट रह जाती है। क्योंकि देखो आईटीआई सेक्टर दे विच ज्यादातर साडे जेड़ा रूरल या कह लिए एरिया दे लोग जेड़े हैं, ज्यादा बच्चे एदे विच आंदे ने।
1: हाँ जी
0: ते उस तो बाद जेड़े बच्चे हैं उन्हां नूं इन्नी रूरल एरिया च तुहानू भी पता है कि इन्ना इंटरनेट फैसिलिटी कह लो इहो जी ही हुंदी है कि उन्हां नूं नहीं अवेयरनेस हो जांदी हो पांदी हैगी वी कि कीड़ियां पोस्टां ने, या
1: हाँ
0: असीं
1: जी
0: कीड़ी कंपनियां च जा सकदे हां, वड्डियां कंपनियां ने, कोई भी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, इलेक्ट्रॉनिक दी कोई कंपनी है, ठीक है, तां ओहदे विच भी बड़ा इक रह जांदा है। कुछ इक होर चीज भी आ जांदी है,
1: हाँ
0: जिदा
1: जी
0: आईटीआई सेक्टर है, मोस्टली ज्यादातर बच्चे जेड़े हैं आईटीआई कर लेंदे, अपना खुद दा छोटा मोटा काम शुरू कर लेंदे हैं,
1: अच्छा जी
0: ते उन्हां नूं ना एक बैरियर जा हो जाता है कि असीं किसी कंपनी च जाके काम करांगे, या
1: हाँ
0: सानू ओहदे
1: जी
0: लई फिर सानू अपना पिंड छड्डना पऊगा, या फिर सानू ओहदे लई अपना जिला छड्डना पऊगा, या फिर ओ ए पंजाब छड्डना पऊगा, क्योंकि काफी पंजाब तो बाहर भी इस दियां जिहड़ियां सीट्स ने अवेलेबल, काफी डिमांड हैगी है जिहड़ी,
1: अच्छा जी
0: तो बच्चे अपने घरां नूं छड्ड के बाहर नहीं जाना चाहते, तो वो इस करके अपना इधर ही देखते हैं कि असीं खुद दा काम शुरू कर
1: अच्छा
0: लईए।
1: एक गल दसो भी जिहड़े लड़कियां दे लई इस खेत्र दे विच की भविख हैगा, उन्हां लई किस तरह दे कोर्स ने, कोई लड़कियां लई
0: हाँ
1: विशेष कोर्स ने जां यही कोर्स उन्हां लई हैगे ने?
0: नहीं, लड़कियां दे लिए विशेष कोर्स तां आपां इह कह सकदे हां कि जिवें इत्थे सीविंग दा हो गया, सीविंग कटिंग दे कोर्सेज हो जांदे ने
1: अच्छा जी
0: काफी, हांजी इलेक्ट्रिशियन ट्रेड दे विच काफी जांदियां ने कुड़ियां,
1: अच्छा
0: ते
1: जी
0: इक स्टेनोग्राफी इंग्लिश जेड़ा ट्रेड है ओहदे विच इह वी इक कॉमन कोर्स असीं कह सकदे हां
1: हाँ
0: कि
1: जी
0: कुड़ियां कर सकदियां ने, क्योंकि इहदे विच काफी बच्चे जांदे हैं, गर्ल्स भी ज्यादा मात्रा विच जांदियां ने,
1: हाँ
0: ठीक
1: जी
0: है। बाकी जेहड़े कोई इदां दा बैरियर नहीं है, जिदा मोटर मैकेनिक हो गया, इदां दे कोर्सेज ज्यादातर मेल्स ज्वाइन करदे हैं, बॉयज ज्वाइन करदे हैं,
1: अच्छा जी
0: बट जिदा सीविंग कटिंग हो गया, या फिर अपना स्टेनोग्राफी इंग्लिश हो गया, इंटीरियर डेकोरेशन डिजाइनिंग हो गया, नेटवर्क टेक्नीशियन हो गया, ठीक है,
1: अच्छा जी
0: इदां दे काम हैगे हैं जेहड़े कुड़ियां भी अप्लाई कर सकदियां ने कोर्स ट्रेड, या फिर इलेक्ट्रिशियन दा भी कुड़ियां काफी करदियां ने,
1: काफी
0: तां
1: वधिया, कुड़ियां लई खेत्र वधिया हैगा।
0: हांजी हांजी बिल्कुल।
1: होर कोई गल जिहड़ी तुसीं दसनी चाहुंदे हो इस खेत्र बारे?
0: इस खेत्र दे विच ये है कि देखो जिद्दां मैं तुहानू पहलां दस चुकी हां कि जेहड़े बच्चे हायर एजुकेशन च जाना चाहंदे ने, देखो इक चीज दा जरूरी तौर ते है कि पहला डिसाइड कर लेना चाहिदा बच्चे नू कि मैं प्राइवेट सेक्टर च जाना है, या फिर मैं गवर्नमेंट सेक्टर च जाना है, या
1: अच्छा
0: कि मैं
1: जी
0: अपना खुद दा रोजगार खुलना है, कुछ भी अपना
1: हाँ
0: स्वयं
1: जी
0: रोजगार बनाना, कुछ भी अपना बिजनेस वगैरह करना है, फिर ओहदी तैयारी उस अकॉर्डिंग होएगी।
1: अच्छा जी
0: जिदा जे कोई बच्चा चाहता है कि मैं पब्लिक सेक्टर दे विच जाना है, गवर्नमेंट सेक्टर च जाना है, तां उन्हूं थ्रेटिकल अपना बड़ा रखना पऊगा, मजबूत रखना पऊगा नाल नाल, क्योंकि ओहदे विच बच्चे नूं टेस्ट देना पऊगा, टेस्ट कढ़ने पैणगे, ते नाल दी नाल उन्हूं अप टू डेट रहना पऊगा वी कहड़े टेस्ट आ रहे ने, उन्हां दी तैयारी नाल दी नाल करदे रहना पऊगा। 2 साल दे दौरान जदों ओहदे ओहदा आईटीआई जद तक कोर्स कंप्लीट होगा, ओहदे नाल नाल ही उह बच्चा या तो चलो जे जेकर वो बच्चा अंडर एज है तां वो डिप्लोमा कर सकदा है, अगर वो एज ओदी 18 तक हैगी है तां वो बच्चा फिर पीडब्ल्यूडीज दे अंडर, या फिर कोई भी इदा गवर्नमेंट पीएसयूज दे अंडर निकले हुए टेस्ट ने जेड़े वो अप्लाई कर सकदा है, ओदी तैयारी नाल दी नाल करी जावे।
1: अच्छा जी
0: बट जिवें आपां प्राइवेट सेक्टर दी गल करदे हां, जेकर बच्चे ने
1: हाँ जी
0: प्राइवेट सेक्टर च आना है तां उहनूं बच्चे नूं थोड़ा प्रैक्टिकल नॉलेज दे विच तेज होना पऊगा, प्लस ओदे कम्युनिकेशन स्किल्स जिहड़े हैं बहुत मैटर करते हैं।
1: अच्छा एक मिनट, मैं ये दसो भी जिहड़े वोकेशनल जिहड़े कोर्स हुंदे ने ते आईटीआई, इन्हां दोनों दे खेत्र विच की फर्क हैगा?
0: वोकेशनल कोर्सेज जिहड़े कि स्कूल्स दे दौरान बच्चे लै लैंदे आ, जिदा कटिंग सीविंग दे भी काफी हुंदे आ, या फिर इसे दे नाल मिलदे जुलदे काफी सारे हो जांदे, इलेक्ट्रिशियन वेल्ड इलेक्ट्रिशियन वगैरह वाले भी आ जांदे आ, तां उहनां दा